0: थिमेश्वर मंदिर में दर्शन करना आने भक्त सन में हार्दिक अनुरोध।
1: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्वविख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

है रेला ऊ चपाऊ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे धूम धूम छिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे।

टक टक टक टक टक टक टक रे हो यति का दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड हो रा

0: अब क्या कहूँ कि मेरे हुजूर हर हर नफस में बस तू है, मेरी आरज़ू में मेरी बंदगी में बस तू है, तू है बस तू है, इस इश्क की ना इंतहा। अब क्या कहूँ कि मेरे हुजूर तू दरिया है, मैं हूँ पानी, तू दरिया है, मैं हूँ पानी, दरिया का हूँ मारा, मेरे मुर्शिद मेरे यारा, तू सच में तेरा तारा, मेरे पीर का तू है इशारा, माफ़ुदा, मेरे मुर्शिद मेरे यारा, तू सच में तेरा तारा, मेरे पीर का तू है इशारा, माफ़ुदा।
1: दुलिखिल अस्पताल दुलखा, अस्पताल दुलखा को सूचना। दुलिखेल अस्पतालद्वारा संचालित दोलखा अस्पतालले विभिन्न सेवा संचालन शुरू गरिसकेकाले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराई मौकाको फाइदा उठाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। हाम्रा सेवाहरू: शनिबार बाहेक बिहान 9 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म ओपीडी सेवा,
2: 24 घण्टा आकस्मिक सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, इन्डोस्कोपी कल्चर, मानसिक स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा,
2: डिजिटल सीआर सिस्टमद्वारा एक्सरे सेवा र एनआईसीयू सेवा,
1: 24 घण्टा आकस्मिक उपचार तथा बिरामी भर्ना,
2: 24 घण्टा फार्मेसी सेवा,
1: आधुनिक उपकरणहरू तथा अपरेशन थिएटर सहित सञ्चालित अस्पतालमा महिला तथा प्रसूति विशेषज्ञद्वारा प्रसूति जाँच तथा अपरेशन,
2: हार्जुनी सम्बन्धी विशेषज्ञ उपचार सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट दन्त सेवा,
1: हार्ट चोनी नसा सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा हड्डी भाँचेका, हड्डी खिएका, नसा च्यापिएका बिरामीहरूको लागि अपरेशन सहितको सेवा अन्तर्गत पाता राख्ने तथा निकाल्ने सामान्य शल्यक्रिया र फिजियोथेरापी सेवा,
2: ईसीजी, भिडियो एक्सरे तथा प्रयोगशाला जाँच,
1: रगत सम्बन्धी मृगौला, मुटु र कलेजोको जाँच, थाइरोइड जाँच,
2: दिसा पिसाब खकार परीक्षण गरिनुका साथै वीर्य जाँच र परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्याहार सेवा सम्बन्धी परामर्श तथा अस्थायी साधन वितरण,
3: विशेष मेसिनद्वारा नवजात शिशुको जन्मजात श्रवण समस्याहरूको परीक्षण तथा पहिचान, जिल्लाकै क वर्गको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन।
1: अन्य थप जानकारीको लागि
3: सम्पर्क नम्बर 0494-12-020।
1: धुलिखेल अस्पताल दोलखा, अस्पताल दोलखा।
4: सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ
5: वा तपाईहरूलाई तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि सुन्दर शान्त